0: ठीक है करके। हाँ
1: सही खासी हो गए। हाँ
0: ओके Five two five, Igor, en route to the academy for training. 525, okay.
1: Two, six, six, six, yeah.
0: Okay.